0: 30 में हम मना करी थी 30 मिनट हिंगा फकोरिया में दा राज ना में दुगे शो का तफात एक ही बैठे हिमाना लाए गए कुरे के अंदर रीति लावे को में दुगे शोस में फेशी शो कुरे के अंदर नो करी थी सिग महा में नो कोला बैवरिंग के तेरे गुरु तुम है बैर नर में गुड़ा दम दाने में गिना तो कम मैसेज कोला बैवरिंग का या गेम फुर्सत ली बिगे नाने
1: मैं शो वस नो करी थी हां में कुरे दाने शो का बैवर वन बेन व फराता को मैसेज कुरे मु गेंदानी पीएसएम एआ में दुरे को डीएफएम 91 मी पेज शोगन नोट को फवा बैवरिंग के तेरे बैवरे का गुला ले फम यो ने स्टाम देखो
2: वालेकुम सलाम
1: दुसु
2: पापा
1: को बान वेजे मु कुरे यो गुलनी
2: थैंक यू
1: कौन का मैं कहते उड़े नहीं दूनी तक कान देनी
2: नो रोशिश ने माला है
1: हाँ हालु बला लं दो
2: किन हाल थोड़ा हेल्प देखो दे
1: मिकोलों हमारे अंगल दो शाहो
3: बराबर
1: किन वनी ती कोला मूसू
2: वारा
1: रीत दूसरों किन अभी मत मिली ती वनी ना ला मूसू मक्का मिली वनी
2: रीत हम वाज है ये विस्तार
1: हाँ वार बहुनी मतो साड़ी वाणी दूसरा
3: एहंत हां मेरे साड़ी वाणे तालो
2: वार बड़ा को विस्तार सदा होती वार विस्तन
3: ओ एमे हिग्या मको त दो
1: सिनी फिनी दुआ हक वाणे दो
2: हां दे वार से हिग्या वा
1: हिग्या मोने
3: दूसो सब को बस है के कंकर निम्माल तो
2: है निमणी है
3: कुछ तैयार कर ली मैं तो
2: थोड़ा मैं रिंदा फिर आज नोट पाला
1: ओह हाँ
2: मेरे लिए हम तीखमाले
1: आ मादी ये तो
3: यार देर उन्होंने कमाने हो रही है कम स्कूल लंग ये
2: स्कूल लंग जे क्या करने
3: दोसो दोसो गेम में ही गया हम कम की दोसो है कुंग ए दो से सेदो को ले फेफूस से नुआन में
2: आहा दे दे
3: आ ना नुआन में दो कुआ के दोसो
2: दोसो हाथ डाल
1: हाथ डाका नु जेने दो
3: कुंग मुले का में नुंगे मेरा गलंग ए गेनी समा में हूं हेदो मकी हां मुले नुआन में हूं हाथ डाका से
2: अच्छा
3: एक हेदेम वरम मोलवाने
2: दे एकन देन को मोले ले दे दो
1: आय के वाह के
2: आ हेदेम हेदेल लगाले ते साहु आओ हेदेल लगालो से के देवा
1: मिया तो देन कोन का मोती दुसु
3: दे दे
2: आ मिया तो देन ने से मिया तो इस्तार दो एन
1: वारिया ते मुं कीने वारिया ते मिलु प्लेन हताल बनी
2: को हां मैं बोगो में हेन्या हम ते में
1: ते में ही वे तो
2: वारत ते में
1: ही एहें
2: अरे दोसे दे नोले
1: का ते मिनु दाता ते मेद वार वे हिजे ते मिदा नंगले नु हिविया ते दे
2: वार हुले हिवे ते हि में कलामा को हती के तो
1: आने चका गंडा गरा राफ दो गोड फिंगर नु तेरे का तू लाफ है
2: गोर पदा लाफ दो
1: आ आदि वार मजा वाने नु मुद दियया वेही वेही ओबा दो
2: आ दतो दे तो वे होने विस्तार दे हम वे नि को मोद को
1: वारंग हि क्या मोने हे में दो हिंगा लव जहां हम गए हम सडोहा हुन्नाने तमिए दो
2: अडोहा
1: एक कल इंतजार को बाटा फुन को जा हुन्नाने कानु लाडो हंगे
3: हां कुरिए जस्ता लफी दा
2: कुरिए गए
3: कुरिए जस्ता लफी तमा मेर वर मालूमा तो एक कुरे इंगे
2: आ हेलो वान
3: आ
2: समाए उले नि तो
3: काबो गदा
1: मैं पूरी वाह के
2: तो वाह कदे मुझे तक्केर सामा इन्ने नहीं
1: तो इंगेन हुरी है इच्छे तो
3: ಅಹರ್ನು ಕೂಡ ಮಸ್ಸಲೇ ಕೇ ದುಸು ಬಿಸಾಲೆ ಕಮಕೆ
2: ಮಸ್ಸಲೆ ಕೊಳಗೆ ನೋಳ ಸಮ ಎಣ್ಣೆ ವಿವಾಹ ದೇಕಿನ ಸಹ ಸಮಯ ಅವ ಮಸ್ ಮುಸ್ತನೆ
3: ಮುಸ್ತನೆ ಮಣಿ ಹೆಮ್ಮೆಗೆನೆ ವಾಹಕ್ಕೆ ತೋ ಮಿಹಾರು ಸಾಫ್ ವೈಜತಿ ಗುಣ ಮಫೂ ಮೆಂಗೆ ಜತಿ ಗುಣ ವಾಹಕ್ಕೆ ಕಬಾ ಹಿಂಗ ಲವ ಅಹರ್ ಮೆಂಗ ಅಡುವ ಹಾಲ ಮಾದೋ ವಾಕಿ ಹಾಸ ಫರಾತ ಕಂ ಮಿ ಹದಿಯ ಕೊಲ್ಲೆಫಿ ಇತುರು ಎವ್ವಸ್ ಮಿಹ ಕಂ ಹಾಸ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನುತ
1: ಬಾಕಿ

0: रामेश्वर सिंह के नाम पे वारंट है।
1: गेट खोलो।
2: अंदर देख रहे हो?
0: बाहर देख रहे हो? इस देश की गरीबी का कारण गरीब नहीं, उनसे लूटने वाले तुम जैसे बेईमान अमीर। थरस अवे और इन्वेस्टिगेशन के बाद रेट्स डालनी होगी। डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेगा।
3: सोडेक बोतल है, ताजा ताजा खुला है, थोड़ा कसूर रहेगा।
0: 7 साल में 49 बार ट्रांसफर हुआ है, जब तक मेरा 50वीं बार ट्रांसफर नहीं हो जाता, किशोर की आदत डाल लीजिए।
4: हर वक्त हंसी मजाक करती हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि मुझे तुम्हारी ईमानदारी से डरने लगता है।
5: हमें तुम जानते हो ना किसके ऊपर हाथ डालने जा रहे हो? अगर कुछ नहीं मिला तो सबसे पहले जो वो चीज तोड़ेगा वो होगा कानून।
0: मैं किससे नहीं डरता, किसी का भी दरवाजा खटखटाने की हिम्मत रखता हूँ।
6: इस घर में कोई सरकारी अफसर मच्छर मारने नहीं आ सकता, तुम रेड मारने आए। खाली हाथ जाओगे।
0: मैं सिर्फ ससुराल से ही शादी वाले दिन खाली हाथ लौटा था, पर मैं जिसके घर सुबह सुबह पहुंचा हूँ कुछ ना कुछ निकाल कर ही लाया। आप सबको रूल समझा देता हूँ, आप किसी से फोन पे बात नहीं कर सकते। रेड के दौरान आप घर से बाहर नहीं जा सकते, ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है।
7: रेड के वहां का बिना एफवनी इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर कमवा पटने के मच्छ लखनऊ के इनकम टैक्स डेप्यूटी कमिश्नर के मगामा एना हवालुवे अंबिमीहा मालिनीया को आदा के दिरुल मेंगुल मुंदने को सिर फरात को लिबे मौलू मातकाय को एना के मुलि दिरुल बदल वेकेंदे एई गिन दोस्त के वंदे टैक्स नुदक्का उले नुफूज का द पार्लियामेंट मेंबर कमवा रामेश्वर सिंह फुरवाफवा बोडु कालो फैसा के वाहका पटने का एना के टीम हिंगा मी ऑपरेशन कुरिया दावरका नुफूज का द आइला तक कुरिमतवा हुरस्तका हगीगता हमी वासिलवुमा उफलंजे हे तकलीफता वर फुरी हमी मी फिल्म फिनिगेंदे फाड क्यूंतरी फाहा कुरागोत का लीड कैरेक्टर के उसूल तंग इम्तिहान कुरेवे दंडवलता होगा माहौल वेरिवा नुतनवस कम वर नेचुरल गोते गगिन इस्तीफवुमकी फिल्म के एमए वारुगा देखकंता फिल्म के फन्नानु के फरातुम फिनिगेंदी सीरियस अदी हगीगता एग्गोय कुलदान एक्टिने मैगनु कैरेक्टर की वरुगद उसूल तक हिफाटा नमवेस इंसानियत कंग इस्कुरा मीहे गे गोतुग दक्वा दी फवुमुं ए हंगुरा मे की बेलुन तेरिन नंग हगी की हुसासे कुरेवे कमक वेगेंदे सपोर्टिंग कैरेक्टरुं गे फरातुम वेस मिवाहा कियं इतुरु फुरिहमक मे गिनेस दी फवे अजय देवगन इलियाना डिक्रूज अदी सौरभ शुक्ला मैगन रोल तकुं फेनिगेंदा अमी फिल्म गे सपोर्टिंग रोल तकुं फेनिगेंदानी अमित सियल गायत्री आया शीबा चड्डा फदा बॉलीवुड का फाहा कुलवे फन्नानो
8: कपड़ा चेक करिए नीचे भी देखिएगा कुछ छोड़िएगा मत
9: राकेश भैया आपकी इज्जत हमारी इज्जत है अगर कुछ मिलेगा भी तो हम दबा देंगे चिंता मत कीजिए
8: भाग दिमाग मत खराब कर
10: भाभी जी
11: भाभी जी हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना है अब नौकरी बताइए क्या करें
7: रेटा बेगुत वाहक दक्कायर अदिवस वाहक कोलेवे मुहिम इतके कमेंग ए बुहुरी एगे तिरेंग एक कमकी मे फिल्म ग करप्शन गे वाहक गिनेस तीफवा गोई करप्शन ना देकुला कुरा हंगुरा मे की हमे खनी जिस्मानी कुरमत लुमे गे बदलुग नफसानी गोतुं कुरेवे वरुगद हंगुरा मे गे गोतुग दक्का दीफवा कमी फिल्म उन देम बेनुम वी मेसेज बेलुन तिरिना लिबिगेंदिया इस सबबु
0: आप सबको रूल समझा देता हूँ, आप किसी से फोन पे बात नहीं कर सकते। रेड के दौरान आप घर से बाहर नहीं जा सकते, ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है।
4: क्योंकि छोटी मोटी रेड में तो मेरे साहब कमरने लगते हैं, खतरा उठाओगे और ऐसे ही हमेशा बीबी की जान निकालते रहोगे।
0: इंडिया के ऑफिसर्स का नहीं, उनकी बीवियों का बहादुर होना जरूरी है।
12: सब चेक किए सर, कुछ नहीं मिला।
13: कुछ नहीं सर।
14: सर आपको शायद किसी ने गलत टिप दी।
6: अंदर तो आ गए, बाहर कैसे जाओगे?
0: कौन रोकेगा मुझे?
6: राजा जी की फाउ।

0: कुछ नहीं निकल रहा है, खाली पसीना निकल रहा है।
1: फिल्म लिपुन बोर थारुही बबलार मि फिल्म के वाहक गिनिस्ती फवागुता फिल्म उन फिनिगेंदा एक्टी नगिन

0: Die hier FM, nur die Ecke Megahertz.
1: Guess the dialogue. तुम हमारी दोस्ती को यूं जलील नहीं करोगे, मुझे या मेरे माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करोगे, वादा करो मुझसे।
2: अगर मैं दूसरे से कोई वादा नहीं करे तो अच्छा है।
1: हाँ दी, अब मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूं तो अच्छा है। तो फिर मैं चलूं दी, मैं जा रही हूं।
2: सुनो, मुझसे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी मां से। क्या कहूंगा मैं उसे?
1: मां से कहना कि एक वादा निभाने के लिए एक मां का दिल तोड़ दिया, वो मां है ना, समझ जाए।
3: मी कौन फिल्म में गई मैंने डायलॉग है? मी सवाल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बाला ना साल शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दो होग मेंदम बार गड़ सु मिनट कौन में हफ्ता को स्कूरी एक गिंदा बाला ना साल मी शोग गेनेस ते केस्त डायलॉग के एम में गिने सवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवेरे का महा को इफार नगा गुरतुं खास हादिया ली बेने एम गिण सवाल के जवाब रंगल कुरा बैवरी नगाणी कोमे महे गिवस एम फहुश होगा
1: गेस द डायलॉग
4: हिंदी सिनेमा के एम मकबूल एक क्राइम थ्रिलर फिल्म कमावा डोन्ने बुनमु एफएम नेंगे मीहा कुमदवाने मी एकिए की जील तकन एकी गोयगतों खास सवा फिल्मे मी हफ्तागे एहारा मिहार मी बैग मी बलालनी नावार सते का है दिहा अवना हरु निर्णु डुन्ना एगे फहुं दिहास हवना हरु निर्णु डोन द चेस बिगिन सके ना
5: एरा मिहार

0: ಮೇ ಫಿಲ್ಮುಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಬುಡ ಫಾಹಕುರೆವೆಣೀ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ಕುಳದಾಣ ಡುವಲ್ ರೋಲ್, ಏನ ವಣಿ ಹರುಕಶಿ ಡೋನ್ಗೆ ರೋಲಾ ಮಡುಮ್ಯಾತಿರಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ರೋಲ್ ನುಹನು ಫುರಿಹಮೆ ಅದಾಕೊಫ. ಮೇ ಫಿಲ್ಮಕೀ ಏರುಗೆ ಜಮಾನ ಎಮ್ಮೆ ಗುಳೇ ಗೊತಗುಫದ್ದಾಫವಾ ಯಕ್ಷಣ ಅಸರುಗದ ಡ್ರಾಮಾಯ ಹಿಗ್ಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದಿ ವರುಗದ ಡೈಲಾಗ್ ತಯಕುಲವೇ ಮಸಾಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಮೀ ಅಮಿತಾಬ್ಗೆ ಎಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮೇನ್ ಸಿಫ ಎಮ್ಮೆ ವರುಗದೆ ದಕ್ಕುವಾದಿಂಗ್ ಎಂ ಒಫೆದ್ದುಂ ಬೆಸ್ಮೆ.
1: नीचे तुम्हारी आंटी बहुत से अंकल्स को लेकर आई.
2: डॉन, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो.
3: डॉन, इससे पहले कि पुलिस तुम्हें बांधकर खींचते हुए ले जाए, इससे पहले कि ना जाने तुम्हें कितने मासूमों के खून के बदले में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ. मैं तुम्हारे साथ आई, मैंने तुम्हारे गंदे हाथों को अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे अपनी मंगेतर रमेश का बदला लेना चाहती थी.
1: कौन रमेश?
3: बहुत चलाक होना डॉन, लेकिन पुलिस को उस टैक्सी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिल चुके हैं.
0: अमिताभ के मिहिटा कैकड़ का तीरिस आहर फुरुम्फाहूं देहा सवन आहरो फिल्म के लियुंतेरिया जावेद अख्तर के दरिफुलो फरहान अख्तर बनी आ जील का डॉन अलम तारफ को दीफा.
4: शहरत मेरा जुनून है, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार, कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में. जिंदगी से खेलना मेरा शौक है, खेलता हूं अपनी शर्तों पर. जीतना मेरी जिद नहीं, मेरी आदत है. अरे दीवानों, अब तो पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन.
5: यस, हु इज इट?
0: एक्सेल एंटरटेनमेंट के दशुं रितेश सिद्वानिया फरहान अख्तर प्रोड्यूस करी मी फिल्म के लीड रोलम फेनिगें दिए शाहरुख खान, रोमा के रोलम फेनिगें दिए प्रियंका चोपड़ा, मी गेतुरुं अर्जुन रामपाल, ईशा कोपिकर, बोमन ईरानी, ओम पुरी आदि पवन मल्होत्रा फेनिगें दिए करीना कपूर के खास फेनिलुमे मी फिल्म फेनिगें दिया.

0: दोहा को सारे गीतों का जैसा सारो वादा नंत
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हम था अबदो एकु गप्पो मबाउ दोवे

0: ए खियाल तका सहुराया केलते बुनी माँ पोड़ा
1: मिहात
0: मस्ते लाफा सामसलु मस्कोले नगाफा सहुराया को वाले बुनु मिहां देने एक मकु अशाना बलाहट टैगे हुरी ओल वालन सहुराया कुरे वेने एविस कमेने वी हुरी हां कमका बुने बुनु इच्छे बुने बुनी अशाना बलाहट टैगे हुटा
1: दरफर कौन है मामा हैप्पी है ना उन दो
0: अशाना ऐही ज़हुरा ए बहनुवी
1: की वे हैप्पी नुआंवे मी मामा बहनुवी गोई
0: ज़हुरा देखे वहाँ का अशाना कबूल नुकुले वो मायको कुरंगे कंते होके वहाँ का देख कुम्के पतल का तेंवेस अशाना देखी ऐहम वहाँ के
2: मामा नुजह नती हेंगुले का डैडी आलु मेरी कुरंवी नु
0: अशाना मटु मटुम पुनी
1: दरफला डैडी आए को मोड़ गए ने नो मामा डिवोर्स वे एनोस मेरा हैप्पी को उले उले फा देंगे वह कुट्टा ला खामा कुत्ता दरी फुलती आई
0: वारा लोए पाए को ज़हुरा बोनी
2: बादी ये बकिया मेरी कुरम वे नों हैं ऐ मैं मम्मा के क्या तो बुना नी बाला लम वे के मियाई
1: अब वह कुरम वे नो डैडी की तब ने
2: डैडी पुनी डैडी के मसले ने तो मम्मा के मसले ने किया Mama kari ga hal bala show ya wah kadak kalam. Daddy kulias masa lainnya.
3: Adi sifar nudi ke megards tibi efe matiun bolna tibi hun tiri na ufa ya wah kor tengen de. Dia me alugur me megenis tini. Bima Ibrahim Wahid ke wah ka ishq. Mi genis dini, mi waha kaya ke bawis warna bay. Mi afta ke bay to kurum ke bayan bi, Zahura Nazat Rashid, Nasif Hussein Rashid, Laila Faq Bahira, adi achana ke bay kurdini Shaiha Ahmad. Mi afta ke bayar sehun teri na kamudika mau mihdu kurumu anna afta ke mi wah kayak muling abe kayak iya patlo kolum mi gaya.

देह के अलावा तक गिने थे मजदार तिम्मते खान साबा साशत सचदेव गैडू किया फवा जान से गुजरते हैं मिलावे के आस्तब लैलैरो मी कव्वाली के रस के फंड आदि दुनिया के उफेदुन एमे मुलो कव्वाली लवक्यों तेरिया लेजेंडरी नुसरत फतेह अली खान नवारसते के हैदिया हाइक किया फवा क्लासिक लव दिल पे जहम खाते हैं के रीमेक गैकड़ का फंसा सहारवरे मुस्कुले मी लव मिहान मिवणी देहा सभ्यों के बॉलीवुड के तासोसी थ्रिल्ला फिल्म का पड़ी आंखों तक के निस्तिफा आदि मिलावा क्यों मां खान साब होम की वर फुरी हमार निम्मो में सबब की एने की सूफी आदि कव्वाली म्यूजिक का पाकिस्तान के मिजामान के एम इहुतिराम लिबिगें बा एंग अडवों आदि नुसरत वते अली खान के हम इतारी ही आइलैंड पे वा फंडान का बसवों एने वनी ओरिजिनल लवे कदरा हैब ती फाटमो आमिल कुत्ते मिलावे के निसीफा जान से गुजरते हैं लेमेरी पहुंचुनान मा बिगे माने की आमिल ला फोरान कुर्पां को आमी हां बदल ही फुंगे जासो से त्रिलाए के तेरे आमिल ला नफसवरे बोड़ कम कट्टका पुरिहा ऐचे गुरुपां को आमी ही के हितु के रिहुं मिलावेगा हान साबाए को म्यूजिक डायरेक्टर साशत सचदेवस पैविरे फवे फर्स्ट मिनटा एतिरे सिकुंतु के दिगु मिनाए को मी मुले एल्बम का वैसे मेने एम में दिगु आदि मड़ु मड़ुं अड़ो हां मी हां के ही तमाय करना फदर ही भी नका हां रीत लवें अड़ो हाल मा जान से गुजरते हैं।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: लोबी लोबी